युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य और प्रदूषण के समाधान के साथ ही ईंधन की बचत भी होती है। श्री मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड

0: से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हुए हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में लू से बचें विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय है मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का पालन करने और राष्ट्र के हित में योगदान देने पर। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें विषय पर। वार्ताकार हैं प्रज्ञा गौतम। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और दोस्तों, हम आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लू से बचाव आवश्यक है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी से भरे फल भी हमें अत्यंत लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का तला भुना और मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके बजाय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें और सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढककर, हल्के ढीले कपड़े पहनकर, धूप का चश्मा लगाकर या छाते का उपयोग करके जाना चाहिए। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त आराम और नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अधिक गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। साथ ही हल्का व्यायाम, योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गर्मी में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने, सकारात्मक सोच रखने और ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत सुने, किताबों को पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों, मरकोर एक खूबसूरत और दुर्लभ जंगली बकरी है, जो अपने लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए

प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मारखोर की आबादी पिछले दशकों में बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश और घरेलू पशुओं के साथ चराई के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। ग्रीन बेल्ट के संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही यह प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य लोगों को इस प्राणी और इसके आवास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इस दिन का महत्व केवल मारखोर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को भी याद दिलाता है। मारखोर शाकाहारी होते हैं और वे पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए मारखोर की सुरक्षा केवल एक प्रजाति को बचाने का नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देती है। मारखोर के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई गांवों ने संरक्षण के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वे अपने इलाके में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में पारंपरिक शिकार को नियंत्रित करने और पर्यटन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मारखोर की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जैसी संस्थाएं सरकारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मारखोर की आबादी पर नजर रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। यह सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रजातियों की सुरक्षा में हमारा योगदान आवश्यक है और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मारखोर की सुरक्षा न केवल इस सुंदर प्राणी के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मारखोर का अस्तित्व हमें आशा, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता की याद दिलाता है। इसे संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा दायित्व भी है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का अनुसरण करें और राष्ट्र हित में योगदान दें पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 प्रमुख अपील जनता से की। उन्होंने कहा, ईंधन का बचाव करें, विदेश यात्रा से बचें, सोने की खरीदारी कम करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरकों में कटौती करें, साथ ही वोकल फॉर लोकल का पालन करें। दोस्तों इन सभी बातों का मुख्य उद्देश्य खपत को कम करना है। साथियों हम सभी अगर इन बातों का अनुसरण करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जैसे ईंधन का बचाव अगर होता है तो पेट्रोल डीजल का उपयोग हम कम कर पाएंगे, इससे हमारा खर्चा कम होगा। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे हमारी मुद्रा विदेश में जाने से बची रहेगी। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में। आपको विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीज़ें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों कई बार तो यूजर को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से

मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानीपूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अप

0: अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें पर। वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय जैसी संगत वैसी रंगत पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह जिन लोगों के साथ रहता है उनके विचारों, व्यवहार और आदतों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। इसी सत्य को दर्शाने वाली कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसका स्वभाव और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, संगति का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। बचपन और युवा अवस्था सीखने की अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यदि बच्चे अच्छे मित्रों और संस्कारी लोगों के संपर्क में रहें, तो उनमें अच्छे गुण विकसित होते हैं। वे ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और विनम्र बनते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी संगति गलत लोगों से होती है, तो वे झूठ बोलना, आलस करना, अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें सीख जाते हैं। साथियों, अच्छी संगति हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। अच्छे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी संगति विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की नींव को तैयार करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में संगति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष मित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी हमारे विचारों, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच, ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य का चरित्र और भविष्य उसकी संगति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सुख, सफलता और सम्मान से भर देती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुख और असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
6: बस
5: समझ गया।
6: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम। मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
8: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
9: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने,
8: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
9: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
8: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
9: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
8: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
9: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
8: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
9: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
8: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
9: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
8: थोड़ी सी सावधानी
9: दूर करे सभी परेशानी।
10: बाजू।

0: कहते हैं प्यारे पम पम पम।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी

शाल मलिक होलगड़े की आवाज़ में अभी आप वेलकम टू कराची फिल्म का गीत सुन रहे थे। कौसर मुनीर ने इसे लिखा था और जीत गांगुली ने इसकी धुन बनाई थी। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तुम बिन

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में। फिल्लौरी फिल्म का गीत है, अनविता दत्त ने इसे लिखा है और शाश्वत सचदेव की धुन है।

मंजर बलियावी का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं, पलक मुछाल और अमित मिश्रा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम तिश्नगी।

कार्यक्रम के अंत में आपको पैडमैन फिल्म का गीत सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौसर मुनीर के बोल हैं, अमित त्रिवेदी की धुन।

0: तेरी बिजली का। पैडमैन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पीपुल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड, न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित कार्यक्रम, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं भारत भवन भोपाल में सदा निराग आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजे हैं। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: भाई मुखड़ा कम्प्लीट हो गया ना, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है।
1: अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
0: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक यार?
1: अरे कहावत है यार।
0: अरे कहावत गई तेल बेचने, तू क्या भाव खा रही है, मैं पीछे आ रहा हूँ तू आगे जा रही है, देख तेरा बहुत हो गया अभी। चल अभी थोड़ा अपना कम कर माँ, माँ बोले तो

हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे संजय दत्त, गोविंदा, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और सोनू निगम की आवाज़ों में। नितिन रायकवार के बोल थे, संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम का अगला गाना बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से, अलका याग्निक और उदित नारायण के साथ अमित कुमार की आवाज़, समीर के बोल, विजू शाह का संगीत।

आदेश श्रीवास्तव की बनाई धुन पर आपको सुनवाते हैं श्यामराज का लिखा गीत, उदित नारायण, रंजना जोगलेकर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जाने तमन्ना।

और आइए अब आपको उदित नारायण के साथ सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और फिल्म का नाम राजा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है यस बॉस फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, बोल जावेद अख्तर के और धुन जतिन ललित की।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण की धुन और फिल्म का नाम मोहब्बत।

नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया एक और गीत आपको सुनवाते हैं, समीर का लिखा हुआ, अलका याग्निक के साथ आवाज़ है अभिजीत की और फिल्म का नाम जुदाई।

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में अभी आपने इतिहास फिल्म का गीत सुना। समीर ने इसे लिखा था और धुन बनाई थी दिलीप सेन समीर सेन ने। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की मिली जुली आवाज़ों में इश्क फिल्म का गाना। राहत इंदौरी के बोल हैं, अनु मलिक की तर्ज़।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कवि श्री राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 7 बजने को ही अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
3: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
2: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे

0: महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी भोपाल से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर होगा कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति रहेगा। विषय है जल जीवन मिशन। फिल्म संगीत रात 8:30 पर। 9:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश करेंगे और रात 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें सुनिएगा विश्व थायराइड दिवस पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावर से बातचीत। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर पर आकाशवाणी के नियमित श्रोता जिगर पंड्या।

से बातचीत। नौतपा के दौरान लू से बचाव के बारे में डॉक्टर अभिजीत देशमुख से जानकारी। सुरमई सवेरा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:15 पर सुनिए रामदयाल लोधी और साथियों के गाए बुंदेली गीत। उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा सुबह 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर की तकरीर फ़न और शख्सियत डॉक्टर रजिया हामिद। इसके साथ ही आप सुनेंगे मसूद रजा का कलाम। ज़िले की चिट्ठी सुबह 10:00, 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम होगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनेंगे पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबला वादन 3 ताल। ग्राम सभा कार्यक्रम में कल शाम 7:21 पर आकर्षण होगा लोकरंग। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से जो प्रमुख कार्यक्रम प्रसारित होंगे उनकी जानकारी इस प्रकार है। कल शाम 5:00 आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। समय याद रखिए कल शाम 5:00। पूर्वाह्न 11:00 फोन इन कार्यक्रम होगा, फोन करें गीत सुनें आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश करेंगे। दोपहर 12:00, दिन में 2:30 और रात 10:00। दोपहर 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम पंचतंत्र होगा। 1:10 पर स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति सुनिएगा। घुटनों का दर्द और ऑस्टियो ऑर्थराइटिस कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से भेंटवार्ता। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:30 रमा मिश्रा के गाए बुंदेली गीत सुने जा सकते हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर, जिसमें आप सुनेंगे पुष्पा रानी की गाई भक्ति रचनाएं। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा। शाम 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। रात 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम होगा। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबला वादन झपताल। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कल शाम 5:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की ट्रिशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हो, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में ट्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं।

और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय ट्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन प्रेस्टीज श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी कोकता बायपास रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सनखेड़ी दानिश कुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधोलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल सुने वाले सबे भैया बहनी हरे इनका हमार सुबेंद्र भाई केर राम राम भैया बहनी हरे। राष्ट्रमंडल दिवस राष्ट्रमंडल देशन के रिक्ठे वार्षिक उत्सव आए जौन के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जौन के मार्च महीना के दूसरे सोमवार का मनावा जाते है। यद्यपि राष्ट्रमंडल के कुछ चुनिंदा सदस्य देशन में यह तिथि का आधिकारिक दर्जा मिला है, फिर यही मनावे के तरीका एक मेर के नहीं आए और अधिकांश राष्ट्रमंडल देशन में यही सार्वजनिक अवकाश के रूप में नहीं मनावा जाता है। भाई करो, यह आयोजन के उत्पत्ति एम्पायर डे से

निभाई रही, जौन मूल रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के जश्न मनावे के खातिर शुरू कीन गई रही। यही मूल रूप से महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन माने के 24 मई के दिन मनावा जात रहा, जौन 22 जनवरी 1901 का महारानी विक्टोरिया के मृत्यु के बाद उनका जन्मदिन 24 मई 1902 से साम्राज्य दिवस के रूप में मनावा जाए लाग। भाई करो कुल मिलाए के यह कही कि वो संत जौन राष्ट्रमंडल देश हैं तो वो यह राष्ट्रमंडल दिवस का मार्च के दूसरे सोमवार का मनावा था, पर जौन देश कबो ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा रहें उन देश जौन राष्ट्रमंडल में शामिल हैं तो उनके द्वारा यह राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई का माने आज के दिन मनावा जात है। तले राष्ट्रमंडल दिवस के खुशी के साथ सब जने मनाई खुशी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

भैया वेनियर अपना पंचे सुनित लाग हैं आकाशवाणी से कार्यक्रम चौपाल। तो चौपाल के अंतर्गत प्रस्तुत है बत कहाँ बघेली पॉडकास्ट, जौने का हम पंचे हर इतवार का अपना पंचन के खातिर लेके आयत करी थे। आकाशवाणी के 90 साल पूर हो गए के अवसर पर हम पंचे गांव समाज और जनस्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयन पर अपना पंचन से चर्चा कर रहे हैं। तो आज के बतकहाओं में हमारे पंचन के चर्चा के विषय है गर्मी में सेहत की रखवारी, आयुर्वेद के आसान उपाय। भाई करो देखी, गर्मी के मौसम में लू पानी के कमी और खान पान के अनियमितता के कारण कई एक मेर के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाती करती हैं। एहिन से एह साइत सेहत के विशेष ध्यान रखब जरूरी होता है। तो भाई करो एह विषय पर आज हमसे बतकहाँ हो रहा है डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जी से, जे शासकीय स्वशासी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय रीवा में सहा एक प्राध्यापक हैं। तो बतकहों में हम पंचे जानब कि गर्मी में शरीर का स्वस्थ रखे के खातिर आयुर्वेद का सलाह देते हैं, लू से कैसन के बचा जा सकत है, खान पान कैसन हो चाहिए और किसान और ग्रामीण परिवार कौने सरल घरेलू उपायन का अपनाई के स्वस्थ रह सकत है। तो आई शुरू करी थे आज केर बतकहाँ।

0: भैया बहनी हरे राम राम। आकाशवाणी के कार्यक्रम चौपाल वत कहो माँ अपना पंचन के सब जनन के स्वागत है। भैया बहनी हरे, गर्मी के मौसम माँ सेहत के ध्यान रखा बहुत जरूरी होता है, खासकर गामन माँ खेत खरिहान माँ काम करे वाले लोगन के खातिर। तो आज हम आयुर्वेद के आसान और घरेलू उपायन के बारे में चर्चा करब। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जी। डॉक्टर साहब, एक गर्मी के दिनन में गांव के लोगन का सबसे ज्यादा कौन कौन दिक्कत होती है?
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री। जैसे आपने पूछा, गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो लू लगाई के होती है।
0: जी
1: लोग गांव के लोग जाते हैं खेती बाड़ी करे, दोपहर में धूप में खेतन में,
0: जी हाँ
1: जब खेतन में जाते लंबे समय तक काम की दोपहर होते, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती,
0: जी
1: शरीर में पानी कमी हो जाती, तो बहुत सारी समस्याएं उनको चालू हो जाती।
0: जी
1: एक एम विशेष रूप से जैसे उल्टी चालू हो जाती है, उनका पेट संबंधी बीमारी हो जाती,
0: जी
1: अब त्वचा संबंधी जैसे लंबे समय तक पसीना आवा उनका,
0: जी
1: कठोरिया हो जाती, फंगल इन्फेक्शन, आंख आंखन में जलन चालू हो जाती, और पशुओं के संपर्क में रहते तो उन्हों को समस्या होती साथ में।
0: जी आयुर्वेद के हिसाब से गर्मी के दिनों में खान पान कैसा होना चाहिए?
1: गर्मी के दिन में खान पान आयुर्वेद कहता है कि
0: जी
1: गर्मी में पित्त दोष बढ़ता है
0: जी
1: और कफ दोष कम हो जाता है।
0: जी
1: जब कफ दोष कम हो जाता है शरीर के बलों कम होता है,
0: जी
1: तो खान पान हमेशा पित्त का शांत करे वाला करे चाहिए या पित्त कफ का बढ़ावे वाला।
0: बोला जी
1: तब पित्त कम करे वाला जैसा अनाज ले, जैसे पुराना चावल है, गेहूं है और दाल है, मूंग के दाल ले चाहिए,
0: जी
1: सब्जी मतलब की तरोई, फल ले चाहिए जैसे सीजनल फल है तरबूज ले चाहिए,
0: जी
1: खरबूजा है, परवल है, करेला है, पालक है,
0: जी
1: दे छाछ होती है कि ज्यादा वह है कि चूंकि गांव से संबंधित वह होता है आदमी
0: जी
1: छाछ ज्यादा पिए,
0: जी
1: और पित्त जौन बढ़ाते जैसा लहसुन प्याज हींग सरसों लाल मिर्च अदरक इनसे जुड़ी चीज न खाए,
0: अच्छा जी
1: खट्टा पदार्थ न ले, कोशिश करे इमली अचार दही सिरका, भारी भोजन न ले जैसा
0: जी
1: उड़द के दाल राजमा छोला पनीर
0: जी
1: और नॉन वेज मांस मछली,
0: जी
1: तला भुना पूरी कचौड़ी समोसा, गर्म चीज जैसे आजकल लोग कॉफी चाय, इन
0: जी
1: सबका गर्मी में परहेज करना चाहिए इन चीजों से, तब
0: जी
1: जाके बेहतर खान पान हो सकेगा और गर्मी में होने वाली समस्या उनका दूर की
0: दूर
1: जाएगी।
0: की जा सकती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब यह बताइए कि गर्मी में अगर लू लग जाए तो घरे में तुरते घरेलू उपाय तीन जा सकता था
1: बिल्कुल, जो हमारे पास उपलब्ध है साथ में वो
0: का?
1: मतलब अधिकतम लाभ लीन जा सकता था।
0: जी
1: जैसे आप जैसे किसी को खतरनाक लू लग गई तो
0: जी
1: सबसे पहले ओखा छाया में लेटा दे, लेटाए
0: जी
1: के बाद ओखा तापमान देखे कि तापमान का है,
0: का है शरीर के तापमान? जी
1: ठीक है ना,
0: जी
1: फिर तापमान यदि ज्यादा है तो
0: जी
1: ओखा कम करे के उपाय करे,
0: जी
1: जैसा ठंडे पानी के पट्टी करे
0: जी
1: गर्दन मा सिर मा हाथ मा पैर मा, तौलिया भिगो भिगो के
0: जी
1: कम से कम 2-2 3-3 मिनट में वो बदल बदल के करत रहा है।
0: जी
1: दूसरा पंखा यदि अवेलेबल है तो पंखा करे, नहीं तो हाथ वाला पंखा करे,
0: जी
1: कोशिश करे कि बर्फ के तौलिया में बर्फ लपेट के ओहू से थोड़ा ठंडक दे के कोशिश छीन जा सका दी।
0: जी जी
1: तुरंत यदि गांव में है तो सबसे ज्यादा मौजूद इस समय आमा के पना है,
0: जी
1: यदि मौजूद उपलब्ध है पना तो पना
0: जी
1: उखा पिलावा जाए, आस पास यदि ओ आर एस के घोल मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं
0: जी
1: आए, ओ
0: जी
1: आर एस घोल नहीं आए तो छाछ और लस्सी भी जा सकती,
0: जी
1: ठीक है ना,
0: जी
1: करेगा का नहीं आ तो वहां अचानक बिल्कुल बहुत ठंडा पानी ओखा नहीं पियावे गया है,
0: जी
1: मरीज बेहोश हो तो जबरदस्ती कुछ रखवावे पियावे, ओखा
0: जी
1: खुद लेटा रहा दे, और चाय काफी बिल्कुल ना दे,
0: जी
1: ठीक,
0: जी
1: और उसके

0: बार कोशिश करें कि तुरंत जहां आसपास डॉक्टर मौजूद हो उनके पास ले जाइए, सब व्यवस्था करें के
1: वाह
0: बाद।
1: जी, चलिए यह बहुत निकहा बताएं। गर्मी में पानी पिए के सही तरीका का है? का खाली ठंडा पानी पिए वो ठीक है?

0: करेगा,
1: बंद करी जी।
0: ठीक है ना। ठंडा अचानक ले लेंगे, गर्म ठंड हो जाएगा तो गला भी खराब हो सकता है।
1: जी
0: पसीना अचानक ही ठंडा पानी ले लेंगे तो शरीर से जो पसीना जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना निकलता है
1: जी
0: वो ना निकली
1: जी
0: तो ओखा बिल्कुल। और बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी ले तो सिर दर्द चालू हो जाता है।
1: जी
0: तो कोशिश करें चाहिए कि अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ठंडा पानी न लिया जाए।
1: जी जी
0: अब ठंडा का स्थान पर जो नॉर्मल ठंडा है प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी
1: जी
0: वह पिया जाए।
1: जी
0: आप बैठ कर पीना, लेट कर नहीं।
1: जी
0: आप थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पिए
1: जी
0: और कोशिश करें कि गर्मी में एक सामान्य तौर पर खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक ज्यादा पानी ना पिए।
1: जी जी
0: और आजकल एक और चीज की जा सकता है, सुबह उठकर 1 से 2 गिलास आप पानी पिएंगे
1: जी
0: तो पेट भी उससे साफ होता है।
1: जी जी
0: ठीक है ना
1: जी अच्छा, अब यह बताइए कि गर्मी के मौसम में छोट बच्चन और बूढ़न के स्वास्थ्य के देखभाल की खातिर का सावधानी रखे चाहिए।
0: जो बच्चे और बुजुर्ग है
1: जी
0: उनका सुबह 10 से लेके 5 बजे तक बाहर न जाए दे।
1: जी जी
0: पहल का
1: जी
0: बच्चा है खेलने के लिए प्रयत्न करा था लेकिन कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठावे, जल्दी खेलने के लिए भेजे
1: जी
0: अब जिससे 10 बजे तक उनका खेल कूद पूर्ण हो जाए। अब वृद्धन को तो विशेष रूप से बचाव की जरूरत थी।
1: जी
0: कपड़ा जो उन्हें फुल पहने
1: जी
0: आधा कपड़ा पहने शरीर में लू लगने की संभावना बना थी
1: जी
0: तो फुल कपड़ा बने।
1: जी
0: यदि स्कूल लग रही जैसे आजकल अप्रैल मई तक कुछ स्कूल लागती है
1: जी
0: उनका छाता या बोतल लड़के लड़के का भेजे स्कूल।
1: जी
0: और खाना और पीना के में विशेष रूप से ध्यान रखे।
1: जी
0: दोपहर के जो है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पियत रहा है
1: जी
0: और कोशिश करें नारियल पानी मिल जाए दोपहर के।
1: जी
0: और घर का माहौल जैसे घर में रहता हो लड़का बच्चा
1: जी
0: कूलर या पंखा के उपयोग करत रहा है।
1: जी
0: ठीक है ना।
1: जी
0: और जबरदस्ती उनका सुलाए दे कि बाहर जाके कोशिश ना करें
1: ना करें।
0: यह एक आम उपाय है कि जो इन जा सकता है।
1: जी हाँ जी जी बिल्कुल सही कहें। अच्छा अब यह बताइए कि आयुर्वेद में ऐसा कौन पे देसी पे हैं या के घरेलू चीज हैं जो उन गर्मी में शरीर का ठंडक दे सका था।
0: सबसे पहले तो घरेलू और आयुर्वेदिक पेय में
1: जी
0: सबसे इजी अवेलेबल जो पेय है वह है सत्तू।
1: जी
0: सत्तू के लिए 2 चम्मच जो जुआ है
1: जी
0: जौ और चना
1: जी
0: खर सत्तू बना बता दू।
1: हाँ जी जी
0: ओमा 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ओखा डाल दे।
1: जी
0: ओमा काला नमक
1: जी
0: जीरा और नींबू
1: जी
0: इसका सबका मिला के पेस्ट वो बना के घोल को पी लेना।
1: जी
0: वो सबसे सरल और सबसे आसान से उपलब्ध उपाय है।
1: जी
0: ठीक है। चरक सुसुप में भी ये बताया गया है।
1: अच्छा जी जी
0: दूसरा सब जो सबसे आसानी से उपलब्ध पेय है वो आम का पना है।
1: जी
0: आम का पना पहले आम को उबाल उबाल ले ओखर गुदा उदा निकाल ले फिर वहां काला नमक पुदीना जीरा मिला के ओखर साग मिक्सर बना के
1: जी
0: घोल बना के पिए का है।
1: जी
0: तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बेल के शरबत जो लोग भूल जाते हैं।
1: जी
0: बेल के शरबत से पाचन भी बहुत अच्छी रहा थी।
1: अच्छा
0: तो गर्मी के महीने में चूंकि पित्त बढ़ जाता है कफ घटा था
1: जी
0: तो जठरांग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती।
1: जी
0: जब ओखा शुद्ध करे खीते बेल के शरबत लीन जा सका था।
1: जी
0: और धनिया और सौंफ के पानी साथ में लीन जा सका था।
1: जी
0: 1 चम्मच धनिया 1 चम्मच सौंफ रात भर भिगो के रख दे
1: जी
0: 1 गिलास पानी में फिर सुबह छान के पी ले।
1: जी
0: अंतिम छाछ भी लीन जा सका थी।
1: जी
0: ये सब उपलब्ध है घर में छाछ।
1: जी
0: और इससे भी अच्छा करना है तो ORS घर में बनाइए आप।
1: जी
0: 1 गिलास पानी ले ली
1: जी, जी
0: एक चुटकी नमक
1: जी
0: और आधा कटा नींबू
1: जी
0: और 2 चम्मच उसमें चीनी
1: जी
0: ये सब मिला के मिक्सचर बनाए उसको पिए।
1: जी
0: ये घरेलू ORS का काम करेगा।
1: जी जी
0: ठीक है ना।
1: जी जी चलिए देखिए प्रकृति जो है तो समय के अनुकूल है देखिए सब चीज देती जैसे कि गर्मी में अपना बताए आम के पना और बेल के शरबत तो देखिए गर्मी में मिलत करा था। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए एक और बात है अपना से पूछे चाह कि आजकल जो उन लोग हैं तो जो तबीयत थोड़ा का खराब है तो जल्दी जल्दी दवाई खा था। अब यह बताइए कि एक के अलावा जैसे अपना के आयुर्वेद माँ

0: ऐसा कोनो आयुर्वेदिक दिनचर्या जो उनके आयुर्वेद के माध्यम से मैंने उनका यह स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोनो ऐसा अगर उपाय है तो अपनाओ का वो के बारे में बताइए कुछ।
1: देखिए कहा है,
0: जी
1: आयुर्वेद को समझना है तो आयुर्वेद आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना पड़ेगा।
0: हाँ जी
1: आयुर्वेद के सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम
0: जी
1: आतुर स्वीकार प्रशमनम चा।
0: जी
1: इसका मतलब है कि जो स्वस्थ है
0: जी
1: उसके स्वास्थ्य को बना के रखना है।
0: जी
1: अब बहुत जरूरत पड़े
0: जी
1: तभी उसका इलाज करना है।
0: करेंगे
1: अब आते हैं दो चीजें।
0: जी
1: आयुर्वेद में यदि हम दिनचर्या स्वस्थ वृत्त का पालन करेंगे तो
0: जी
1: सेम उसी तरह है कि
0: जी
1: जैसे कहीं आग लगी है,
0: जी
1: ठीक है ना,
0: जी
1: तो आग लगने पर हम पानी डालने जाएं,
0: जी
1: तो यदि स्वस्थ वृत्त और दिनचर्या का पालन करेंगे तो
0: जी
1: आग लगेगी ही नहीं और
0: जी
1: पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल
1: यह सबसे बड़ा हुआ है,
0: जी
1: ठीक है। बीमारी का इलाज करब तो जरूरी है,
0: जी
1: लेकिन आयुर्वेद कहा था कि बीमारी ना हो सबसे बड़ी जरूरी वो है,
0: वह है जी जी बिल्कुल
1: ठीक है ना।
0: जी
1: तीसरा यह कहा है कि कोनो दवाई है तो तुरंत राहत दे गई,
0: जी
1: लेकिन स्वस्थ हुई तो दिनचर्या और दिनचर्या का पालन करा तो
0: जी
1: लंबे समय तक अपना स्वस्थ रह सकी थी,
0: जी जी हाँ
1: दवाई की आवश्यकता महसूस ना हो।
0: हुई जी
1: और फिर
0: बिल्कुल
1: बाद यदि दवाई की आवश्यकता पड़ा थी फिर डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाए चाहिए, आप इलाज करे चाहिए,
0: जी
1: लेकिन जो तुरंत हर चीज में दवाई खा ले उपाय ना हो।
0: जी
1: दवाई का नकारे का नहीं है, यदि
0: बिल्कुल
1: कोनो इन्फेक्शन होगा है, शुगर है, बीपी
0: जी
1: है, हार्ट के मरीजों का दवाई ले का है,
0: जी
1: लेकिन स्वस्थ वृत्त और दिनचर्या में पालन करें उनकी आवश्यकता कम
0: कम
1: पड़ेगी।
0: पड़े जी
1: आप अपना कहान की करे का है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठाए,
0: जी
1: नित्य क्रिया के पालन करे, फिर व्यायाम करे
0: जी
1: आयुर्वेद माध्यम से
0: जी
1: जैसा बोला गया है। फिर
0: जी
1: दूसरा महत्वपूर्ण चीज का बोला गया है कि ऋतु के हिसाब से खान पियान रखा है तो बीमारी कम हो।
0: हो
1: आप जैसे अभी हम बताते रहे कि गर्मी के ऋतु में पित्तवर्धक आहार खा तो अगर बीमारी लगभग करी
0: लगो भाई करी बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: ऋतुचर्या का पालन करें तो बहुत कुछ बीमारी से बचा जा सकता है।
0: जी। चलिए बहुत अच्छा अपना बताया ना। अच्छा अब एक अंतिम अपना नसीहत पूछे चाह कि आकाशवाणी के जो है तो 90 साल पूरा हो चुके हैं, तो अपना का आकाशवाणी से का अनुभव मिला गांवन में स्वास्थ्य और खेती से संबंधित जानकारी पहुंचावे में एकर का कैसा योगदान रहा, एकर बारे में अपना कुछ अपने तरफ से बताइए।
1: जितना हमका पता है कि
0: हाँ जी
1: 8 जून 1936 में आकाशवाणी शुरू हो रही,
0: हाँ हाँ जी
1: 2025 आवत आवत 90 साल लगभग
0: जी हाँ
1: हो गए हैं।
0: जी
1: अब जब शुरू हो रहा है तो एक मूल उद्देश्य रहा है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ठीक।
0: जी
1: वही के आधार पर जो रहा क्या कहते हैं अपना आकाशवाणी
0: जी
1: 90 साल तक उसी मूल मंत्र को लेकर आगे काम किए।
0: जी
1: अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ही की दुई चीज, क्योंकि
0: जी
1: हम स्वास्थ्य से जुड़े व्यक्ति हैं तो
0: जी
1: स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाओ
0: जी
1: कि जब इंटरनेट नहीं रहा, मोबाइल नहीं रहा,
0: जी
1: टेलीफोनो नहीं रहा, तब
0: जी
1: आकाशवाणी रहा।
0: जी
1: आकाशवाणी रहा तो उसके माध्यम से भी कहीं कोई महामारी फैल गई थी
0: जी
1: तो उसका सूचना हर व्यक्ति तक कैसे भी पहुंचे, वो
0: जी
1: सूचना पहुंचावे के काम को कही आकाशवाणी की।
0: जी
1: अब वो सूचना पहुंचावे के साथ साथ वो महामारी या जो संक्रमित बीमारी है उसे बचे के का उपाय है
0: जी
1: आम जन तक लगभग हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किसने किया।
0: जी
1: इसके लिए समय समय पर आकाशवाणी में नियमित कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे
0: जी
1: संक्रामक बीमारियों से बचे के उपाय,
0: जी
1: संक्रामक बीमारियों के लक्षण, ये सब उन्हें बताया जाता है। तो
0: जी
1: बहुत बड़ा स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य को ठीक करने में आकाशवाणी का योगदान रहा। अब
0: जी
1: खेती की बात रही,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग 90% लोग खेती से जुड़े व्यक्ति हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: आकाशवाणी के माध्यम से सबसे पहले तो मौसम की सूचना मिल जाती कि मौसम कैसा है, उसके हिसाब से आदमी अपनी बोनी खेती कर सकता है।
0: जी
1: दूसरा कौन बीमारी उस समय खेती में खेतना फैल रही है क्योंकि फसल में लगी रही है,
0: जी
1: वो बीमारी से बचे की फिर कौन कीटनाशक या कौन

0: जो पेस्टिसाइड का उपयोग
1: हाँ जी
0: किए
1: जी
0: जा रहे, ओखा
1: जी
0: जानकारी मिला थी
1: जी
0: कौन उन्नत किस्म है, कौन कौन उन्नत किस्म का बोवा जाए,
1: जी
0: ओखा वो मिला थी जानकारी। चौपाल एक सबसे बड़ा माध्यम है, चौपाल
1: जी
0: न हो तक भारत के विकास है इतना हो जितना हमका लागत है। क्योंकि आज ना रेडियो को लोग कम सुन रहे हैं, लेकिन
1: हाँ
0: पहले के जमाने में
1: जी जी
0: लगभग लोग रेडियो सुन के सब काम करते रहे।
1: करते रहे, बिल्कुल सही है।
0: और रहा पहले जब दूरदर्शन और टीवी नहीं थी तब, आज भी आज तक खेल की कमेंट्री से लेके कोई भी लाइव प्रसारण हो
1: जी
0: उनकी कमेंट्री सब चीजें आकाशवाणी के माध्यम से चलती है।
1: जी
0: आकाशवाणी तो जीवनदायी चीज है।
1: जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपना बहुत निकली जानकारी दिए, इसके खातिर अपना का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भई करो, यह रहा चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत बतकहों बघेली बाट पॉडकास्ट, जौने में हम गर्मी के मौसम में सेहत की देखभाल और आयुर्वेद के आसान उपायन पर चर्चा की है। हमारे साथ रहे डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जी, जे सरल शब्दन में बताएं कि सही दिनचर्या, संतुलित खान पान और घरेलू उपायन के माध्यम से गर्मी के मौसम में स्वस्थ कैसन के रहा जा सकत है। आकाशवाणी के 90 साल पूरा होए के अवसर पर हम पंचे ऐसन मने ऐसने उपयोगी और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम अपना पंचन के खातिर प्रस्तुत करत रहा। अपना पंचे इन कार्यक्रमन का न्यूज ऑन AIR ऐप पर घलाए सुन सकी थे। और देखिए एकर अपना पंचे फीडबैक पत्र के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से घलाए भेज सकी थे।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

भैया वहीं देखी साई तब खूब गर्मी पड़ी रही है, पर देखी आज जौन या गर्मी पड़ी रही है तो ओके खातिर कहो न कहो हम हिन पंचे जिम्मेदार हैं। आज पर्यावरण इतना प्रदूषण

दूषित हो गया है कि जौने केर कौनो सीमा ही नहीं आए। जो मने यह बहिनों तक सजग न हुई तो देखी आगे और भयानक स्थिति के सामना मनई का किन्हें परी। आज हमें सबका अपने पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक हो के जरूरत है। अपने पर्यावरण के संरक्षण करी, जैव विविधता का बनाए राखी, पेड़ पौधा लगाई, जीव जंतुओं के सुरक्षा करी, उनकर संरक्षण करी, तब हमार आगे के जीवन सुरक्षित रह पाई। भई करो इन दिशा में कदम बढ़ावत कीन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 मई 2024 का अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के स्थापना कीन गए। इन प्रस्ताव का पाकिस्तान और 8 दूसरे देशों के द्वारा प्रायोजित कीन गा रहा। भई करो मध्य और दक्षिण एशिया के उच्च भूमि क्षेत्र में पावा जाए वाला मारखोर एक थे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व के प्रजाति आए, जौन जंगली पहाड़ी बकरी केर एक थे प्रजाति आए। भई करो यह मारखोर का आवास केर हानि, बार बार होए वाले अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसन चुनौतियों के सामना करे के परत है। भई करो देखी 2014 में यही प्रकृति संरक्षण के खातिर अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संकटग्रस्त प्रजातिन के लाल सूची में शामिल कैलिन गा है। तो आज वह अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित एक थे वैश्विक दिवस आए, जौन अजुवाई के दिन माने के 24 मई का हर साल मनावा जाते है। यह दिवस जंगली पहाड़ी बकरी के प्रजाति मारखोर और वो के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के महात्म का मान्यता देत है। तो देखिए ऐसने माँ फिर मनई का खुशी लागत ही और मनई फिर खुशी मनौतव है।

बम बाज रही भोले की चारों दिशा, बम बाज रही। या भजन अभय भोला बाबा के सुनेन शंकर जी के। देखिए यह समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो उनसे संबंधित रही और ये भजन का गावत रही प्रमिला तिवारी। गए करो देखिए बहुत लागी चलई के अर्जुना। तो चलई से पहले हम अपना पंचन का बता दे थे कार्यक्रम के पता, तब पता अपना पंच लिख ली। कार्यक्रम के पता है चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी सिविल लाइन रीवा जिला रीवा मध्य प्रदेश। पिन कोड है 486001। तो भाई कराओ अभी इन पता पर हमें पंचन कर ही अपना पंचन के चिट्ठिन के इंतजार। अब हो गए चलई के अर्जुना तो दे विदा। चौपाल सुने वाले सबे भैया बहनी हर इनका हम आशुवेंद्र भाई केर राम राम, जय जवान जय किसान।

0: पर्चेस के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
0: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
1: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जीराम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर्ज होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उसे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जीराम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा काम का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जीराम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जीराम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
0: जी बिल्कुल, ये आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बता रही है, चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक कि कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाए। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते

0: सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इस अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की और सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन का है अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यह ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है, तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जी राम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जी राम जी के लिए भारत सरकार ने किया है, तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है, एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा,

0: Σουρχιό με.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी।

0: Surgió mi. नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
0: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सके कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
1: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
3: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं, जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों में

0: विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद में दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गांव में।
3: अच्छा हो गया नहीं तो?
4: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेत करे सरकार ने।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना, बढ़िया हो गया,
3: नल लगी गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह।
7: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा। और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहेज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
0: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहां जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
8: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गाँव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था, लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंटिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले दो वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के सपने को मिलकर साकार करें।
0: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
9: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
10: कि हमारे वार्ड क्रमांक एक में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक एक के 1200 रुपए आ गए हैं, वार्ड क्रमांक दो में 790 रुपए आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक तीन में 2780 रुपए आ गए हैं। सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जलकर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी को वेस्टेज नहीं जाने दें इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
11: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहले सर जवा तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता, माने टाइम बहुत व्यस्त हो जाता। पहले रात पानी हो गया तो नल चालू

0: भरो पानी भरो और मजदूरी भी चले जावा।
1: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
2: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।
3: हर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। धुन बनाई थी राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था तुम्हारी कसम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं देवता फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

आरडी बर्मन की बनाई धुन पर एक और गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत में किशोर कुमार के साथ आवाज है आशा भोसले की और फिल्म का नाम ये वादा रहा।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं।

0: दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly re-poll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Mr. Jayashankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jayashankar

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहां आमद और रफ्त को ताबून के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत ताबून के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तिजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकतदारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलात पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजाय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकतदारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर यह सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीके कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नजर किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमार

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने दिल एक मंदिर फिल्म का गाना सुना। शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन, और इसे सुनने के लिए पत्र आप सभी ने लिखे। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। इसी गीत को पसंद किया था राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार की धुन और फरमाइश आप सभी की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्रा। और इसके साथ ही सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में साहेब बीवी और गुलाम फिल्म का ये नगमा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला नगमा इन सभी श्रोताओं की पसंद पर पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अमंतिका शिवालिका पारसमणि बाघ पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसके साथ ही दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाब दास मानिकपुरी, हिरिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगालपुर से सालिक पुजारी। आप सभी की फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं दिले नादान फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नक्श लाइलपुरी के बोल हैं और संगीत खयाम का।

चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीति, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और आशा भोसले की मिली जुली आवाज़ों में उत्सव फिल्म का गाना, वसंत देव के बोल और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। SH बिहारी के बोल हैं और संगीतकार हैं रवि। गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। और नेपाल पैलेस सागर के हमारे श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोबिन। आप सभी की फरमाइश पर पेश है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गाना।

दिल्ली का ठग फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। रात के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauroshankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Gangashankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauroshankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauroshankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauroshankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauroshankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashant De Roy.
0: Pandit Hauroshankar Bhattacharya darbari ke saath karenge. Yeh bandish aalap aur jod ke saath shuru hogi, jo gat mein vilambit teen taal, tatpashchat madhya lay teen taal mein aabaddh hai.
1: Pandit Hauroshankar Bhattacharya starts his sitar recital with Raag Darbari. Beginning with Alap and Jor, the composition of the rag is set to Gat in Vilambit Teen Tal, followed by Madhyalaya Teen Tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी बिगिनिंग विद आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांतो दे रॉय।

0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है.
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
5: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
4: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President

यह आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव 188.32 मीटर, डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी ऐप पर। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे।